पीआरबीटी 01600022521 पीआरबीटी 5254906 पीआरबीटी 01600022521 पीआरबीटी 5254906 आफ्नो मोबाइलमा पीआरबीटी तथा पीआरबीटी राख्नुहोस्, सुरक्षालाई माया गर्नुहोस्।

पीआरबीटी 01600022521 पीआरबीटी 5594906 पीआरबीटी 01600022521 पीआरबीटी 5594906 आफ्नो मोबाइलमा पीआरबीटी तथा पीआरबीटी राख्नुहोस्, स्रष्टालाई माया गर्नुहोस्।

स्मार्टफोन, भाग्यशाली 10 जनालाई एयरपोर्ट, भाग्यशाली 8 जनालाई स्पिकर र भाग्यशाली 2 जनालाई स्मार्ट वाच बम्पर उपहार स्वरूप प्रदान गरिनेछ। युवाशक्ति मोबाइल सेन्टरबाट सामान खरिद गर्नुहोस् र बम्पर उपहार जित्नुहोस्। युवाशक्ति मोबाइल सेन्टर वीरेन्द्र नगर लाटिकोली लाइन मंगलडी चोकदेखि 150 मिटर तलतिर बाटोको पूर्वपट्टि। मोबाइल नम्बर 98607 34500।